है मावां वर्गी ठंडियां मिठियां छावां वर्गी, मां बोली है मावां वर्गी ठंडियां मिठियां छावां वर्गी, बाल पुने दे चावां वर्गी ते सजन दियां खुलियां बावां वर्गी, खुलियां डुलियां थावां वर्गी मेरे पिंड नूं जांदे रावां वर्गी। आओ इस दी शान वधाइए एदे सोले रल मिल गाइए, क्योंकि रहेगा संगीत रागी ढाडी ज्यौंदे रहणगे, लोक गीतां विच दादा दादी ज्यौंदे रहणगे। दिंदे रहो भर भर मुठियां प्यारे नूं, बोली ज्यौंदी रही तां पंजाबी ज्यौंदे रहणगे।

0: कथा टिप्पणी होवेगी, चलंत मुद्दिया ते मसलिया ते
1: तिरछी नजर रवेगी, कनेडा ते दुनिया दी सियासत ते
0: छह पर लगेगी नवे पुराने गीता दी
1: बाता होनगिया सभ्याचार ते अमीर विरसे दिया
0: सुनना जरूर लाइव शो विद शमी पठल 5:30 AM ते सोमवार तो शुक्रवार
1: बिजनेस दी प्रमोशन ली आज ही कॉल करो 416-917-7763 ते 416-917-7763

सतगुरु होए दयाल दसरदा पूरी है, सतगुरु होए दयाल न कब हूँ झूरी है, सतगुरु होए दयाल त दुख ना जानिए, सतगुरु होए दयाल त हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों माणते हुए जुड़ चुके हैं जी एक बार फिर एक खूबसूरत चढ़ती कला वाली सवेर के खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहना लैके। सुन वाले सारे स्रोतों प्यार भरी सत श्रीकाल आदाब नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि तुम ठीक ठाक होंगे, चढ़ती कला के होंगे, अज की खूबसूरत चढ़ती कला वाली सवेर में जी हाँ आख रहे होंगे। तो रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लैना लैके हाजिर हो चुके हैं जी। स्टूडियो के घड़ी के मुताबिक 7:03 हो चुके हैं। थोड़ा साढ़ा साथ होने तो लैके 8 बजे तक बने रहना।

वाह क्या बात है यार। देखो कई बार असी बहुत कुछ सुनते हैं पर कुछ शांत सुहिरद साफ सुथरी गायकी ये ना रूह की खुराक होंगी है। ऐसिया रूह को सुकून देने वाली आवाज़ों जो तुम सुनना है ना तुम रेडियो डान इंस्टाग्राम से मेरे को कुछ टिकटा पईया रंगले सरदारा दी 7 अगस्त को शुक्रवार की शाम को रोज़ थिएटर ब्रैम्पटन डाउनटाउन च।

0: 30 Rambler Drive, Brampton. Major intersection, Steeles and Kennedy, 9054512600.
1: पापा पापा सुनते क्यों नहीं, चॉकलेट लेनी है।
2: अजी सुनते हो, कहाँ गुम हो?
3: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए, पता नहीं मीटिंग थी। हेलो हेलो हेलो।
4: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बम टू बम ट्रैफिक एंड बम टू बम कॉल्स, ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1 रेडियो आवाज।
5: You are listening to your favorite radio show, Radio Awaz, The Voice, Zindabad, Zindabad. For advertising, please call 416-518-3200.

0: यार इना इंश्योरेंस ने तू कढ़ाता वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा
1: टॉप फाइनेंशियल इंक तो जो अपनी बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने
2: क्रिटिकल मॉर्गेज RESP RRSP विजिटर इंश्योरेंस सुपरवीजा स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स जे तुहाडे कोल 20 नालों ज्यादा ड्राइवर ने ता तुहानू अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे
1: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नू 6473300 3100
2: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन
3: डॉक्टर कुमार लगे हुए नशे तो मुक्ति दवाने वास्ते शराब अफीम पोस्त डोडिया के नशे तो दूर कर देंगे डॉक्टर कुमार लेडीज़ दे मर्दों के गुप्त रोगों का इलाज डॉक्टर कुमार बुजुर्गों के मोढ़े गोडे दुखते हैं भाई डॉक्टर कुमार हर्बल वैगरा भी तुहानू वेचदे आ डॉक्टर कुमार हर तरह के इलाज वास्ते डॉक्टर कुमार 416-425-0138 ग्रेटर पंजाब प्लाजा मार्टन गुरु घर दे कोल डॉक्टर कुमार 416-425-0138 ते कॉल कर सकते हो
4: आज
5: रेडियो भी बिल्कुल फ्री होर दस क्या चाहिए
6: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है
5: पर टिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जा tillovideo.com होर कोई सेवा
7: तुसी अपने फोन प्लान ते बहुत पैसे दे रहे हो सेलुलर पॉइंट ते असी तुहाडे लई लेके आए हां बहुत ही वड्डी सेविंग्स बेस्ट फोन प्लान्स ते बिना किसे शर्त तो चाहे तुसी बिजनेस या फैमिली प्लान्स च सेविंग चाहुंदे हो नो कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन या लेटेस्ट फोन चाहिदा सब तो बेस्ट कवरेज नाल सेलुलर पॉइंट ते तुहानू सब कुछ मिलेगा विजिट करो सेलुलर पॉइंट सेव टुडे इट्स दैट इजी अपनी नियरेस्ट लोकेशन cellularpoint.ca ते वेखो सेलुलर पॉइंट मोर फोन्स मोर प्लान्स मोर चॉइस
3: A to Z किचन कैबिनेट भाई वाह क्या किचन कैबिनेट तैयार करदे हन लक्की भाजी दीआं बणीआं किचन कैबिनेट देख के गुआंढी वी बहाने नाल तुहाडे घरे आउंदे हन शीशे नाल भरीआं किचन कैबिनेट वास्ते डिजाइनर किचन कैबिनेट वास्ते A to Z किचन कैबिनेट 416-720-7073 905-720-7073 ते कॉल कर सकदे हो
8: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी ब्रैम्पटन निवासियां लई खुशखबरी हुण जदों वी तुसी कैनेडियन

0: जो छोड़ जाते हैं वो वापस भी आ जाते हैं, कुछ समय के लिए जाते हैं फिर वापस भी आ जाते हैं। पंजाबी विरसा ट्रैफिक सारा जैम है पंजाबी विरसा रेडियो का। ओ भाई तुहाडा ही शो है सारे का। हेलो
1: हेलो भाई।
0: हाँ जी सर।
2: इसीलिए
0: तो मैंने लगाया, मेरे को याद था ना फिर। थैंक यू वेरी मच थैंक

अरे अपनों को मनाना है, थोड़ी देर तो लगेगी। क्या बात हुई भाईजान, क्यों मनाना है, नाराज क्यों हुए हैं? किसी को पता है? ये नाराज ऐसे ही हो जाते हैं क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं।

0: मिशन वैनिटीज से न्यू शिपमेंट आ गई है। बाथरूम वैनिटीज से सिलेक्टेड मॉडल्स से भी अप टू 60% ऑफ। कॉन्ट्रैक्टर्स ने स्पेशल प्राइसेस। ए नहीं नहीं, वैनिटीज भी परचेज से सिलेक्टेड रेंज ऑफ मिरर्स फ्री। मिशन वैनिटीज डिक्सी एंड डेरी दे बिल्कुल नजदीक। कॉल 9056711800 905-671-1800।
1: कंडीशंस अप्लाई।
2: सर सर।
3: हाँ जी।
2: तो एक सवाल पूछा।
3: पूछा।
2: तुम मेरे दस सकते हो कि सब तो कौड़ा फल केड़ा होंदा?
3: सब तो कौड़ा फल पता नहीं।
2: अरे तो नो इन्ना भी नहीं पता सर किन्ने बनाता?
3: हाँ
2: प्रिक्या फल।
3: हाँ
4: फिट्टे मु तेरे।
5: ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आहे ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL, because we care.
6: Culture of Punjab is sponsored by Airport Nissan. For the best deals in Brampton, come to Airport Nissan at the corner of Airport Road and Queen Street, or call 905-791-4900.
7: Ladies and gentlemen, introducing from CHLO AM 530, the number one radio host in the world.

0: अपने
1: परिवार दी रक्षा करो, सिर्फ लाइसेंस इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर ही वरतो, अते यकीनी बनाओ कि ईएसए परमिट हासिल करन। होर जानन लई हायरलाइसेंस.ca ते जाओ। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अथॉरिटी वल्लों एक सुनेहा।

0: 09 याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू 416-509-1509 और विजिट insuranceforyou.ca।
1: दोस्तों देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो नो या चलो AM 530 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उन्हां नू सुनन वास्ते जां देश प्रदेश नू लाइव देखण वास्ते लॉगिन करो साडी वेबसाइट नू www.deshpradeshradio.com या www.deshpradeshtv.com। लाइव सुनना चाहुंदे लाइव ते क्लिक करो, जे वाच करना चाहते हो तो ओह ते क्लिक करो, या फिर अपने IPTV बॉक्स दे उते पंजाबी सेक्शन क्लिक करो, ओदे उते जाके देश प्रदेश टीवी नू क्लिक करो, उते तुसी सुन भी सकदे हो, वेख भी सकदे हो 24/7। चलो AM 530 तो तुसी सुन रहे हो अपना हरमन प्यारा रेडियो प्रोग्राम देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो। पिछले 30 वर्षां तो तुहाडे अंग संग देश प्रदेश हुण अपने शाम दे प्रोग्राम दे विच वाधा कर चुका। पहला तुसी सुनदे सी मंडे टू फ्राइडे 4 to 6, लेकिन हुण तुसी सुनदे हो 3 to 6 शामी, जाने के देश प्रदेश तुहाडे लई शाम नू 3 घंटे पेश हुंदा है, ते नाल तुसी दुपहरे सिरड़े 1 to लैके शाम दे 4 बजे तक देश प्रदेश नाल सांझ पाउंदे हो। देश प्रदेश रेडियो प्रोग्राम दे विच कोई भी अपने काम कार दी एडवरटाइज करनी होवे तां अफोर्डेबल पैकेज लई अज ही कॉल करो सम्राज सिद्धू होरां नू 416-457-3381, 416-457-3381, जां तेजिंदर सिंह सिद्धू दे नाल कॉल करो 416-725-2551, 416-725-2551। देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो पिछले 30 वर्षां तो 7 डेज़ अ वीक तुहाडे अंग संग। चलो AM 530 ते

0: 515-8000।
1: हाय रब्बा, हुण की बनू?
2: जे तुसी कार इंजरी च इन्वॉल्व हो गए हो या सट लगी है, गलती तुहाडी या किसी होर दी, तो याद रखो इको नाम बरा टेंबर पर्सनल इंजरी लॉयर।
3: इन्हां कोल है 5 धड़ल्लेदार कैनेडियन जंपा लॉयर्स दी टीम,
2: जो दवांदे ने वध तों वध लीगल सेटलमेंट, नो अपफ्रंट फी। इन्हां दी टीम हुण तक मिलियंस डॉलर तक दी सेटलमेंट करा चुकी है, ते पैसे सेटलमेंट तों बाद ही चार्ज करदे ने। अज ही कॉल करो रूपा बराड़वरा नूं 416-991-4949 416-991-5939 बराड़ टैंबर पर्सनल इंजरी लॉयर, हाईवे 10 एंड डेरी, 6980 मार्टिस ड्राइव।

0: क्या बात है, बड़ा शानदार गीत, वन ऑफ माई फेवरेट झूमर गुरमन बिरदी का यह गीत है, ऑल टाइम फेवरेट। सुन के बंदे का मलो मली भंगड़ा पाँ है, मोटे तो बंदे तो हिलते ही है ना, जड़े जड़े भी भंगड़े करते हैं ज करते रहे जे सीख रहे हैं। ये म्यूजिक ढोल वाला कुछ है ही यहोजा भी बंदा मलो मली हाथ पैर मोटे कुछ भी हो बंदा मड़े मड़े जाना हिला ही लेंदा, तो हिलाने भी चाहिए है नाले एक्सरसाइज, तो नाले थोड़ा जा फन शन बहुत जरूरी है। चलते हैं कॉल दे वाल जी। जी बलदेव जी सत श्री अकाल। क्या बात है, हो ठीक ठाक हो?
1: तेरा बापू तो जान सारे आप जानते कट्टे हाँ
0: जी।
1: मेरा गीत लाई भुलर का, सुरजीत भुलर का फायर
0: केड़े वाला जी?
1: सुरजीत भुलर का फायर FIRE
0: फायर।
1: क्या
0: क्या बात है, ये सुनते रहिए चंगा गीत है,
1: वधिया गीत है, कहना फिर चल आना वधिया गीत है।
0: क्या बात है, ला देने यार जरूर
1: ला देने बन के
0: फायर हैवी फायर मिर्च वाले काम है।
1: मैनू कहंदे बाबा मिर्च वाला।
0: अच्छा ठीक है, नहीं ला देने फायर वाले काम करना फिर। ओके जी जरूर ला,
1: धन्यवाद
0: जरूर ला देने, शुक्रिया जी। क्या बात है फायर। 905-673-33-9059056733337 अज दिन वैसे है वीरवार का थर्सडे का, पर लगता ए भी यार आ गया, बस आ गया कौन लॉन्ग वीकेंड, सारे इंतजार होंदा समर टाइम दे विच यार, बस अज ते कल फिर शनि ऐत सोम छुट्टी लॉन्ग वीकेंड बनावांगे गर्मिया दे विच, घरे भावें बारबिक्यू करिए किते अंदर बाहर जाइए, पर अपने आप नू आपा जरूर खुश रखना है, कोई ना कोई एक्टिविटी आप जरूर करनी है, हजे भी साढ़े को टाइम है, बंदा पहले ही सोच ले भी यार आ चीज करनी है इस वीकेंड ते, आ चीज घरे बनानी है आप जा, होर भी काम वैसे बड़े होंदे ने, पर अपने आप नू आपा एंटरटेन जरूर रखिए, हजे भी दो दिन ने प्लानिंग कर लो लोंग वीकेंड दी। कहंदे आ कहंदे किथे लब्बण तुरिया तू, किथे लब्बण तुरिया तू, उसदा कोई देस नहीं, तू ही काले चिट्टे पौना ओदा कोई भेस नहीं। क्या 905-673-33-9059056733337 नंबर गीत संगीत भी कुछ अज जा फनी जा विषय भी रखांगे, ते एक कॉल दे वाल चलते हैं पहला 2825 जी सत श्री अकाल
2: जी। सत श्री अकाल सरबजीत सिंह कितना जी?
0: बहुत वधिया सर, तुसी सुनाओ।
2: हाँ जी ठीक ठाक है, गुड इवनिंग, बहुत वधिया, कहिंदे हुंदे आ निखरमी चमकमी धुप चढ़ी हुई आ
0: नजारे वाली जी,
2: नजारे वाली आ, देखो आपां इन्हां दिनां नूं इंजॉय करना चाहीदा, इन्हां सियाल नूं ते इन्हां दिनां च नेरा हुंदा।
0: बिलकुल सही गल जी, जी
2: नहीं सॉरी इन्हां दिनां च इस टाइम कहना,
0: इस टाइम नेरा हो जांदा, बिलकुल समझ गए जी तुहाडा कहना।
2: हां
0: हां बिलकुल हुण ते ला लो जे ला सकदे आ पिछे बैकयार्ड दे विच वधिया, ते बंदा टमाटर सब कुछ लगाई फिरदा।
2: जदों जदों बलदेव भाई ने कहा ਵੀ ਮਿਰਚ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲਾਨੇ ਆ ਮਿਰਚਾਂ, ਫੇਰ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਮੇਰਾ।
0: ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਇਹੀ ਬਸ ਮਕਸਦ
2: ਸਾਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ।
0: ਹਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਫ ਹੈ ਨਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ
2: ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए। मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
1: चौबीस घंटे सत्ते दिन खुला सब्जी मार्केट, रेस्टोरेंट एंड ग्रोसरी स्टोर दो लोकेशंस तो सर्व कर रहे ने, सैंडलवुड एंड मैकलॉगलिन 10 लोरमेल गेट, यहाँ पहुँचो 10970 ब्रैमली रोड। वेज एंड नॉन वेज बिरयानी बाय वन गेट वन फ्री, चना पटूरा बाय वन गेट वन फ्री, फिश पकौड़ा बाय वन गेट वन फ्री, तंदूरी चिकन लेग बाय वन गेट वन फ्री, मैंगो लस्सी, सॉल्ट लस्सी, मिठी लस्सी बाय वन गेट वन फ्री। हर रोज फ्रेश साग ते मक्की दी रोटी, टिफिन सर्विस, पिकअप अते डिलीवरी दे लई वी अवेलेबल है। दोनों लोकेशंस ते फ्रेश सब्जियां, फ्रूट ते ग्रोसरी दे आइटम, ते हुण आलू गोभी मूली ते प्याज आले परौंठे 299 दे विच, अमृतसरी कुलचा विथ चना 799 ते पनीर एंड मिक्स परौंठा 399। सब्जी मार्केट।